सुना है लोगों से खाटू वाले श्याम जी बुरी से बुरी मुसीबत से भी निकाल सकते हैं। आ रहा हूँ मैं भी बाबा, अब आप ही हैं जो मुझे संभाल सकते हैं।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए।

0: गुड मॉर्निंग गंगापुर सिटी, मैं आपका रेडियो दोस्त रेसी मिला। दोस्तों फिलहाल आप ट्यून कर रहे हैं 99.6 रेडियो ओडीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। दोस्तों अभी आपने सुना फिल्म संगीत कार्यक्रम, थोड़ी देर में आरंभ करने जा रहे हैं आपका मन पसंद फेवरेट कार्यक्रम हल्लू फरमाइश। कीजिए थोड़ा सा इंतजार। दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के साथ आप आनंद लेंगे लू फरमाइश का।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: हेलो,
4: हेलो
3: जी, नाम बताएं।
4: क्या
3: नाम बताएं सर आपका?
4: गंगापुर सिटी।
3: बताएं गौरव जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
4: तेरी मेरी कहानी।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं गौरव जी आपका, आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ सर, नाम बताएं।
1: सर नाम मंजूर अली खान।
0: मंजूर अली खान जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: गंगापुर सिटी से। सर
0: बताएं खान साहब, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो से?
1: सर गाना वो है गुलाबी आंखें।
0: गुलाबी आंखें?
1: जी सर,
0: बिल्कुल सुना रहे हैं खान सर आपको, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में कुल किया। धन्यवाद।

0: जी नाम बताएं सर।
1: रफीक खान बोल रहा हूँ, लोगों को मस्जिद के पीछे सर।
0: रफीक जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
1: आप? आने से उसके आए बाप।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का ये गाना। हेलो।

0: बिल्कुल सुना रहे हैं मोनिका
1: जी। मोनिका
0: हेलो।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग जी, नाम बताएं आपका।
1: सवाई माधोपुर से मोनिका बोल रहे हैं सर।
0: मोनिका जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप। बिल्कुल सुना रहे हैं मोनिका जी आपका, आपकी वॉइस का बेहतरीन सा सॉन्ग रेडियो बेस में खुल के। धन्यवाद।

0: मॉर्निंग सर।
1: गुड मॉर्निंग जी, नाम बताएं। बताए, बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका। हेलो
2: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर आपका।
2: चौधरी निवेदन कर रहा
1: हूँ। चौधरी जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डी एफ से।
2: तुमने रक्तोली तस्वीर मारी।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका, आपकी फरमाइश से बेहतरीन सा सॉन्ग रेडियो डी एफ में। कुल किया बहुत बहुत धन्यवाद।

0: गुड मॉर्निंग सर।
1: गुड मॉर्निंग जी, नाम बताएं।
0: निशा शर्मा गंगापुर से बोल रही
1: हूं। बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: मुझे माफ करना, ओम साई राम।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं आपको, आपकी चॉइस का ही गाना।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: हेलो
3: हेलो
2: जी, नाम बताएं।
3: गुलशन।
2: गुलशन जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
3: गंगापुर सिटी।
2: बताएं गुलशन जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: ईमान डोल जाएंगे सॉन्ग।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं आपका, आपकी फरमाइश का ये बेहतरीन सा गाना।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: DS साइंस एकेडमी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक एक विद्यार्थी 98% से अधिक 7 विद्यार्थी 97% से अधिक 28 विद्यार्थी 96% से अधिक 53 विद्यार्थी 95% से अधिक 76 विद्यार्थी 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। DS साइंस एकेडमी में दाखिला लें और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JE6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड RBSE एंड CBSE एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल सिनोनिम ऑफ सक्सेस।

0: हेलो
1: हेलो राधे राधे सर।
0: राधे राधे, नाम बताएं सर आपका।
1: आसाराम जी का नाम है सर, गंगापुर सिटी से बोल रहे हैं।
0: आसाराम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो डीएस से।
1: सखी सपने में एक अनोखी बात हो गई।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका, आपकी फरमाइश का ये सॉन्ग।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर?
1: बादल।
0: बादल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: गंगापुर सिटी से बात कर रहे हैं।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: टैग आवारा का।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश का गाना।

0: तू रवड़ा तानू प्यारी मैं तन्ने जोड़ा के
1: कोठिया कराले धरती के वासे करोड़ा।
2: हेलो
3: हेलो
2: जी, नाम बताएं सर।
3: जिला बाड़मेर राजस्थान से रूपचंद गोयल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें सर जी।
2: रूपचंद जी नमस्कार, आपको सभी सुनने वाले श्रोतागण और आपके मित्र परिवारजनों को बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं बाड़मेर से आप?
3: आज ये सुना, पिक्चर का नाम है दिल है बेताब और गीत के बोल है क्या तुम्हें पता है ए गुलशन मेरे दिल भर आने वाले।
2: सुना रहे हैं सर, ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सॉन्ग आपको, आपके लिए डीएस रेडियो में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्ते सर, नाम बताएं आपका।
1: नाम है बाबू खान।
0: बाबू खान जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी लखेरे की बगीचे।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: दूर रहकर ना करो बात, करीब आ जाओ।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी प्रवाइस से बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: बुला देवी।
1: बुला देवी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: मिर्जापुर।
1: मिर्जापुर गंगापुर सिटी से। बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हो?
0: चांद के पार चलो।
1: चांद के पार चलें?
0: हाँ
1: बिल्कुल, सुना रहे हैं आपको, आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: जी नाम बताएं सर।
1: नाम है चांदखान लोको कॉलोनी गंगापुर शेडी सर।
0: गाना बताएं।
1: गाना नसीम मूवी का तुझे भूलना चाहा गोविंदा वाली का।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका, आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: मेरा नाम है महेंद्र कुमार।
1: महेंद्र कुमार जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: गंगापुर सिटी जिया गारमेंट।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: मेरे गाने के बोल है मेरे बटवारा फिल्म का गाना है।
1: कौन सा गाना है सर?
0: मुझे ध्यान नहीं आ रहा बोल गाने के।
1: चलो ढूंढ के और चला देंगे सर। आपने कुल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: वो वाला गाना तेरे बात तेरे सदना तुम्हारा कौन लागे।
1: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, तुम मेरा

0: जी नमस्ते।
1: जी नमस्ते सर, नाम बताएं आपका।
0: ठंडीराम भूजल बोल रहा हूँ, गांव बदरका से।
1: ठंडीराम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: सर गाने के बोल है, तुम तो ठहरे पर देसी साफ क्या नभाओगे।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश।

0: जी बोल रहे हो ना? हाँ जी, नमस्कार
1: जी। नमस्ते, नाम बताएं सर आपका?
0: ऋषि जी बोल रहे हो ना?
1: यस सर, ऋषि मीना बोल रहा हूँ रेडियो डी एस से।
0: अच्छा, मैं तिलगा से बोल रहा हूँ। आमिन शाह।
1: आमिन शाह जी, कैसे हैं आप?
0: हाँ बढ़िया है, तबीयत कुछ नॉर्मल ही चल रही है।
1: अच्छा अच्छा, जल्द स्वस्थ हो जाएंगे सर आप, उम्मीद करते हैं। बताएं आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे रेडियो डी एस से?
0: आज हमारे घर से जमीला गाना सुन रही है, दिल में तुझे बिठा कर कर लूंगी गंदा।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आप, बेहतरीन सर गाना।

0: हेलो
1: नमस्कार सर, मैं चेलवी प्रासा कालवी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: इंद्रभान सिंह जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है सर, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ।
0: कैसा मौसम है आपके एरिया का?
1: सर यहाँ तो मौसम में एकदम जबरदस्त धूप किया है सर, बादल दिखाई नहीं दे रहा है और दोपहर में बादल आता है और सूर्य बादल के

0: पहुंचता है तो प्रकृति भी अपना रौद्र रूप धारण कर ही सकती है, इसमें कोई दोराय नहीं है। बताएं आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप रेडियो डीएस से?
1: आज मैं सुनूंगा सर फिल्म का नाम है सिम्बा, और गीत कौन है ना, वो लड़की आंख मारे कुमार सानू, मीका सिंह और नेहा कक्कड़। ये
0: पीछे धन्यवाद।

0: जी कैसे हैं आप?
1: अच्छा
0: तो बहुत अच्छे हैं सर। बताएं आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो पे?
1: जिंदगी की टूटे लड़ी।
0: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। समय तो मिली नहीं रहा सर कामों से।
1: जी आप कब तक आओगे आप?
0: बिल्कुल आपसे मिलने जरूर आएंगे सर। और अभी तो सुना रहे फिलहाल ये बेहतरीन था गाना, रेडियो डीएस में कॉल किया, धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो। हाँ जी सर, नमस्ते।
2: जी नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
1: जी मेरा नाम अक्षत है, मैं गंगापुर से बात कर रहा हूँ।
2: अक्षत जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: जी गाना है कहानी सुनो।
2: कहानी सुनो, बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश पे बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में खुल के।
1: थैंक यू।

0: हामी हो अंतरिया। हेलो
1: जी, नाम बताएं आपका।
0: नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब।
1: नमस्कार सर। नमस्कार, नाम बताएं आपका।
0: हाँ, रतन लाल बोल रहा हूँ, मऊ कलाट से।
1: रतन लाल जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहेंगे रेडियो डीएस से।
0: ए रोम रोम पर बसने वाले राम, जगत के स्वामी हो अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू।
1: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपको, आपकी सर्विस का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में। कुल किया बहुत बहुत धन्यवाद।

दोस्तों वक्त हो चुका है 11:28 का। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फॉरमाइस 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
1: गुड मॉर्निंग, नाम बताएं सर आपका।
0: सर जय किशन नाम है।
1: जय किशन जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: मैं गंगापुर सिटी TR गारमेंट।
1: पता है सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो डीएस से?
0: जी हाँ सर, वो जी हाँ, मैं हूँ खल नायक।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा सॉन्ग रेडियो डीएस में। कुल किया धन्यवाद।

0: अच्छा बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज?
1: सहारा जब बोल कुटिल।
0: क्या बात है, क्या बात है, सुना रहा हूँ टीना आपको आपकी फरमाइश के बेहतरीन सा गाना रेडियो ने इसमें कॉल किया, धन्यवाद।
2: खुशबू शबाब रंग रवानी उठा किला

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: हाँ
1: नाम बताएं सर आपका।
0: रोहित।
1: रोहित जी कहाँ से बोल रहे
0: हैं?
1: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: लड़की बड्डी अनजानी है।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी रिक्वेस्ट है गाना।

0: नमस्ते, कैसे शर्मा जी? कैसे शर्मा जी, बताएं कैसा मौसम है अभी फिलहाल जम्मू का?
1: सर जी, इधर तो बहुत गर्मी है जी, बुरा हाल है। शाम को ठीक हो जाता है तो दोपहर को बहुत गर्मी है, अभी गर्मी
0: बताए सुनना चाहते हैं आज रेडियो?
1: वो भी फिल्म का गाना सुना दीजिए, मुझे कुछ कहना है।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश से, बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में कुल किया, धन्यवाद।
1: ओके सर जी, थैंक यू।
0: हेलो,
2: मुझे कुछ

देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।

0: नहीं पर अब मुश्किल चुप रहना है, मुझे कुछ कहना है।
1: हेलो
2: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
2: सोनेश।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: गंगापुर सिटी जी आ रहा हूँ।
1: पता है सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: दिल पर जिस्म खाते हैं।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी समय इसका ही गाना।
2: थैंक
3: यू। और अगर ये नहीं मिली ना तो जीना भी छोड़ दूंगा। क्यूट ना?
4: हंस

0: पे जख्म।
1: हेलो नमस्कार सर।
2: नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
1: मेरा नाम सर विष्णु कुमार है।
2: विष्णु जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: देव कॉलोनी से सर।
2: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: मेरे नैना सावन भादो।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका, आपकी फरमाइश का सॉन्ग।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम बताएं।
0: हेलो, किताब चौक।
1: क्या नाम है आपका?
0: हाँ, मैं प्रियंका बोल रही हूँ।
1: प्रियंका जी, कहाँ से बात कर रहे हो?
0: हाँ जी, हम जयपुर सिटी से बोल रहे हैं।
1: अच्छा, जयपुर से। प्रियंका जी, बताओ, किताब सॉन्ग सुनाना है आपको?
0: किताब सॉन्ग
1: बिल्कुल सुना रहे हैं।

0: बताए कोमल जी कौन सा गाना।
1: हेलो
2: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
2: रोहित।
1: रोहित जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: आदर्श नगर।
1: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहेंगे रेडियो डीएस से?
2: जहाँ तुम हो वहाँ मैं हूँ।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी चॉइस का ही गाना।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: कोमल।
0: कोमल जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताएं कोमल जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: तेरी दीवानगी में ऐसा है आलम।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं आपको, आपकी फरमाइश का सॉन्ग रेडियो डीएस में कॉल किया, धन्यवाद।

0: जी नाम बताएं सर।
1: जी जी योगेश जांगड़े बोलना तरह छत्तीसगढ़।
0: योगेश जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, अच्छा है।
0: बताएं योगेश जी, छत्तीसगढ़ में कैसा मौसम है?
1: बहुत धूप है और उमस गर्मी भी है।
0: अच्छा बताएं, रेडियो डी से कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: हमें इसमें क्या बोलते हैं, मैंने प्यार किया से सुनना चाहिए।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का ये बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में। कुल के धन्यवाद।
2: 89.6 पे रेडियो डीएस
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक। 89.6 डीएस एफएम।
4: डीएस साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एन नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 800-55-98-377। इसके अलावा 9983413111।

0: हेलो सर, नमस्ते
1: जी। नमस्ते, क्या नाम है आपका?
0: अमन है।
1: अमन जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: बिहार गवर्नमेंट से।
1: अमन जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: दो बाया की जोड़ी।
1: दो बाया की जोड़ी।
0: हाँ।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम, आपकी फरमाइश के बाद।
1: जी मेरा नाम दिया है।
0: दिया जी,
1: मैं गंगा बात कर रही हूँ।
0: दिया जी गंगापुर सिटी से, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो डीएस से?
1: चांदनी रात में घोड़े चला गया।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम, आपकी फरमाइश से बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में। कुल किया धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: बिल्कुल
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: मोनिका।
0: मोनिका जी बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: ओ मखणा में टार्जन फिल्म का।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं आपका, आपकी हीरोइन का।

0: कॉन्फ्रेंस के बहाने खूबसूरत बीवी को घर पे छोड़कर आया हूँ।
1: इस न्यू ईयर की पार्टी में कुछ खास इंतजाम किया है क्या? नहीं,
2: ऐसा इंतजाम किया है कि आप दोनों का दिल खुश हो जाएगा। आइए आइए सर, अंदर देखते हैं क्या हंगामा हो रहा है।

0: हाँ जी।
1: जी नाम बताएं।
0: खुशी।
1: खुशी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी।
1: बताएं खुशी जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: गुरनाथ का पिंजरा सॉन्ग।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का ये गाना रेडियो डीएसपी।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: आयुष।
0: आयुष जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: गाड़ी 150।
0: बिल्कुल सुना।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: प्रियांशु।
0: प्रियांशु जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: दुर्गापुर सिटी।
0: बताएं प्रियांशु जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: इश्क दे फनियार।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का ये गाना।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: दोस्तों 12:40 का समय हो चुका है। फिलहाल आप मेरे साथ ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। दोस्तों गंगापुर सिटी का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के साथ आप आनंद ले रहे हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम का। दोस्तों 12:45 पे सुनेंगे आप DSI का एक विशेष कार्यक्रम।
0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो?
1: करिश्मे बुलाने जा रहा हूँ।
0: बहू को? अभी 2 दिन तो हुए उसे मायके गए हुए।
1: 2 दिन 2 साल जैसा नहीं लग रहा। और बारिश भी आने वाली है।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: दोस्तों फिलहाल आप ट्यून कर 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के साथ आप आनंद ले रहे हैं लू फरमाइश कार्यक्रम का। दोस्तों गंगापुर सिटी का तापमान 38 डिग्री के साथ साथ 12:45 का समय हो चुका है। फिलहाल सुनेंगे हम एक छोटी सी भेंट वार्ता DSI साइंस इंस्टीट्यूट की।
1: गंगापुर सिटी के अभिभावकों और बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज फिर से हमारे साथ में जो हमारी टीम है उसकी घर वापसी हुई है। मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा मनोज सर और SS सर और रविंद्र सर को एक बार पधारे सर, और हमारे जो MD प्रदीप यादव जी है, और सभी HOD महानुभावों से आग्रह करूंगा कि सभी को माला पहना करके और घर वापसी के लिए सभी को शुभकामना और बधाई दें।
2: बधाई सर, घर वापसी के लिए शुभकामना।

0: सर, अब मैं ये पूछना चाहूंगा, घर वापसी हो गई है और निश्चित रूप से अब आपको यहाँ ऐसा लग रहा होगा कि मैं अपनों के बीच में आ गया, तो क्या कहना चाहेंगे सर?
1: जी सर, घर वापसी करके बड़ी खुशी हो रही है। पहले भी देखो, हमने यहाँ पर बहुत शानदार रिजल्ट दिए हैं और आगे भी फ्यूचर में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। हम ये सोच करके किसी इंस्टीट्यूट में चले गए थे कि वहाँ जाकर हम बहुत अच्छा कर पाएंगे, लेकिन वहाँ पर केवल वीडियो बनाने के अलावा बच्चों पे कोई काम नहीं किया जाता है। इसलिए वापस हमें घर आए हैं और घर आके हमें बड़ी खुशी हो रही है, और जैसा पहले हमने काम किया था उससे कहीं बेहतर काम करके और बेहतर से बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। थैंक सर,
2: धन्यवाद सर।
0: अब मैं एसएस सर से चाहूंगा सर कि आपका यहाँ पर आगमन हुआ है और कैसा फील कर रहे हैं?
3: सभी अभिभावकों को और बच्चों को मेरा नमस्कार। सबसे पहली तो बात मैं ये कहूंगा कि आज मेरे को बहुत खुशी हो रही है वापस यही ज्वाइन कर करके, जिस एम को लेकर के, जिस उद्देश्य को लेकर के हम लोग वहां गए थे, हमें लगा कि वहां वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, सिर्फ और सिर्फ अभिभावकों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं सभी बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो बच्चे अपने पद से विचलित हो गए थे, वो बच्चे भी अगर घर वापसी करना चाहे तो उनका भी मोस्ट वेलकम है। एक बार फिर शानदार से मेहनत करेंगे, बढ़िया से रिजल्ट देंगे, और रिजल्ट के साथ न डीएस ने पहले कंप्रोमाइज किया न आगे कंप्रोमाइज करेंगे।
0: रविंद्र सर, आप भी इस अवसर पर कुछ कहना चाहेंगे, अभिभावक और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
4: सभी को नमस्कार। गंगापुर के जितने भी अभिभावक और बच्चे सुन रहे हैं, उन सबको मैं कहना चाहूंगा, जिस लक्ष्य को लेकर के हमने जो स्टार्ट करा था, जो हमारा एम था, कोर टीचिंग जो होती है और जो रिजल्ट ओरिएंटेड जो टीचिंग होती है, उसी मुद्दे पे उसी जो है कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके चलेंगे, और जो रिजल्ट हमने डीएस में पहले से दिए हैं उसी उम्मीद उसी जोश जुनून के साथ हम आगे काम करेंगे। आइए जुड़िए और अपना फ्यूचर सिक्योर करिए। थैंक यू।
0: अब मैं चाहूंगा कि हमारे जो एमडी सर हैं श्री प्रदीप जी यादव जी से, वो अभिभावक और पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे?
5: सभी अभिभावकों को मैं कहना चाहूंगा कि जैसे डीएस साइंस इंस्टीट्यूट हमेशा रिजल्ट के लिए ही जाना जाता था, आज भी उसे बेहतरीन रिजल्ट हमारी टीम के द्वारा दिया जा रहा है। अब हम आशा करते हैं जो टीम के मेंबर्स जो जुड़े हैं अब उसे बेहतरीन रिजल्ट देंगे। जैसा कई बार ये सुनने को आया कि दूसरे इंस्टीट्यूट के लोग सिर्फ गार्जियंस को भ्रमित करने के अलावा कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ बातें बनाते हैं, मेहनत पर वर्क नहीं करते हैं, सिर्फ बातों के अलावा कुछ नहीं सोचते हैं, हमेशा ऐसा सोचते हैं कि वीडियो कैसे बनाए जाए, दूसरे इंस्टीट्यूट को नीचा कैसे दिखाया जाए, रियलिटी बच्चों पर वर्क नहीं करते हैं। तो जो बच्चा हमसे जुड़ना चाहता है वो डीएस साइंस इंस्टीट्यूट में आए और जुड़े। गंगापुर सिटी के सभी अभिभावकों और बच्चों को मैं कहना चाहता हूं कि डीएस साइंस इंस्टीट्यूट में मंडे से 11th क्लास, 12th क्लास और टारगेट के नए बैच शुरू करने जा रहे हैं। जो बच्चे किसी कारणवश पिछड़ गए हैं वो आके अपना स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। धन्यवाद।
0: हमारे जो केमिस्ट्री के नीट के एचओडी हैं पाटीदार जी सर, उनसे भी मैं चाहूंगा सर कि आप बच्चे और पेरेंट्स को जो अपन नई बैच खोलना चाह रहे हैं उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर?
6: सबसे पहले तो मैं सर लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने बच्चों के भविष्य के लिए बिल्कुल सही समय पर अपना सही डिसीजन लिया है। और जो बच्चों के भविष्य के बारे में सोचता है ना, वो हमेशा उनके लिए काम करने की कोशिश करेगा, हमेशा बच्चों के साथ जुड़ा रहेगा। जैसा कि सर लोग हैं हमेशा बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं, तो उन्हीं बच्चों के लिए हम लोग आगामी दिनों में नए बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। 11th 12th टारगेट सभी के हम लोग नए बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मेरा यही निवेदन है अभिभावकों से भी कि जो लोग ये सोचते हैं कि कहीं पर कुछ छूट गया है, कहीं पर कुछ लैगिंग कर रहा है या किसी क्लास में आगे बढ़ चुका होगा, तो उनको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, और वो लोग आए यहाँ पर जुड़े, उनके लिए बिल्कुल नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है।
0: और मोहित सर, आपके जूलॉजी डिपार्टमेंट में दो लोग और जुड़े हैं, आपकी टीम और सशक्त और मजबूत हुई है, और तो आप क्या कहना चाहेंगे मोहित सर इस बारे में?
7: जी सर, धन्यवाद। पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप डीएस टीम में जुड़े, दोबारा से आपकी घर वापसी हुई। तो देखो, गंगापुर के अभिभावकों और बच्चों से मैं यही कहना चाहूंगा कि डीएस में फिर से धमाका हो चुका है और आप जो आपके फेवरेट टीचर्स थे वो वापिस हमारे साथ बेटा जुड़ चुके हैं। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि जो नेक्स्ट मंडे आ रहा है उससे हमारे जो 11, 12 और टारगेट के नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपके जो फेवरेट टीचर्स हैं वो आपको वहां पर पढ़ाएंगे। तो आप जो है बिना सोचे समझे अब एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि डीएस पहले भी बेस्ट था बेटा, आज भी बेस्ट और आगे भी बेस्ट रहेगा, और ये टीम आपके सामने है। तो आप लोग जितना जल्दी हो हमसे जुड़े, रजिस्ट्रेशन करवाए, आप आके क्लासेज ज्वाइन करें, ठीक है? थैंक यू सो मच।
0: अब मैं बॉटनी के एचओडी श्रीमान हाडा सर जी से भी मैं चाहूंगा सर, इस अवसर पर पेरेंट्स और बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: जी सर, नमस्कार। पहले तो सभी हमारे जो मेंबर्स है, टीम मेंबर्स, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सर, मैं इस उपलक्ष्य में यही कहना चाहूंगा कि डीएस पहले भी अपनी मॉरल वैल्यूज, अपनी स्टेबिलिटी, कोर टीचिंग और रिजल्ट ओरिएंटेड के लिए जाना जाता था, और आज भी सर लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं वो इन्हीं कारणों से वापस जुड़े हैं। और बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि अपना फ्यूचर खराब ना करें और जल्दी से जल्दी नए बैचेस ज्वाइन करें। थैंक यू।
0: फिजिक्स डिपार्टमेंट में भी सुनील सुथार सर जुड़े हैं, फिजिक्स एचओडी श्रीमान सुभाष जी सर से मैं चाहूंगा सर कि सर के जुड़ने से आपकी टीम पहले से मजबूत थी और सशक्त और मजबूत हुई है, अब आप क्या कहना चाहेंगे सर?
8: घर वापसी के लिए मेरे सभी टीचर्स मान लो, सर मान लो साथ के, या भाई मान लो, कि जैसे ऐसे सर, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे बड़े भाई समान है और ये वापस घर लौटे। रविंदर सर, इनको छोटा भाई मानता हूँ, ये घर लौटे और ये तो हमारे सम्मानीय पिता तुल्य आदमी है, अब भाई तो बोल नहीं सकते, तो ये वाली कहानी है। लेकिन बड़ी खुशी हुई है कि हमारे वापस घर लौटे हैं और हम उतनी दुगनी मेहनत से अब और जुनून से यहाँ मेहनत करने वाले हैं, ठीक है? तो जो भी बच्चे अभी रास्ता भ्रमित हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आप आराम से डीएस में जुड़े, इन टीचरों से मिले, बातचीत करें। मैं तो ये कहूंगा बेटा, अभी कोई लेट नहीं हुए, कोई दुरुस्त नहीं हुआ, आप आराम से, पूरा एक साल है ट्वेल्थ के बच्चों के लिए, इलेवंथ के लिए पूरे दो साल है, टारगेट तो बेच ही अब बनेंगे, तो आप डीएस से जुड़े, अभी टाइम नहीं गया है, जून में आराम से जुड़े, अपना फ्यूचर सिक्योर करें, ठीक है बेटा? तो जितना जल्दी हो उतना जुड़ने की कोशिश करें।
9: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: को डांस नहीं करना, वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, DS के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। DS साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन DS, आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.
3: DS Science Academy, Madhyamik Shiksha Board, Rajasthan, Kaksha 10th Pariksha. परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक 1 विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। DS साइंस अकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27, लिमिटेड सीट्स।

गुड आफ्टरनून, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रेडियो दोस्त रेसिना। दोस्तों फिलहाल आफ्टरनून का 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और दोस्तों चलते हैं और लेकर चलते हैं आपको अगले कार्यक्रम नए तराना में। दोस्तों नए तराने कार्यक्रम में सुनेंगे विशेष चटपटी बातें महिलाओं के जागरूकता के संबंध में और सुनेंगे नए नए गाने।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे, दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे, सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना, आप सुन रहे हैं रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का, सुनो दिल से दिल तक रेडियो DS के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSI एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, दिल से दिल तक।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 पर हमारा विशेष कार्यक्रम आत्मनिर्भर महिला मजबूत समाज की आधारशिला। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो समाज की प्रगति, परिवार की खुशहाली और देश के विकास से गहराई से जुड़ा हुआ है। आज का विषय है आत्मनिर्भर महिला मजबूत समाज। दोस्तों, समय बदल रहा है और समाज भी बदल रहा है। आज महिलाएं केवल घर की जिम्मेदारियां ही नहीं निभा रही हैं, बल्कि शिक्षा, व्यापार, विज्ञान, राजनीति, खेल और प्रशासन जैसे हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब महिला आत्मनिर्भर बनती है। आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल आर्थिक रूप से कमाना नहीं है, इसका मतलब है अपने फैसले खुद लेने की क्षमता, आत्मविश्वास, शिक्षा, जागरूकता और अपने अधिकारों को समझना। सबसे महत्वपूर्ण है महिलाओं के लिए कि वो अपने अधिकारों को समझे, उसके प्रति जागरूक रहे कि कब उन्हें क्या किस चीज के अधिकार प्राप्त है। आत्मनिर्भर महिला क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं कि किसी महिला को आत्मनिर्भर होना क्यों जरूरी है। जब एक महिला आत्मनिर्भर बनती है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, वह अपने परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत बनाती है। एक आत्मनिर्भर महिला अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और संस्कार दे सकती है, यह कठिन परिस्थितियों का सामना मजबूती से कर सकती है और दूसरों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहती। अक्सर यही देखा गया है कि सभी परिवारों में एक महिला को बहुत ही संकोच में रखा गया है कि उसके क्या अधिकार हैं, उनका योगदान केवल रसोई तक ही रहता है। जबकि एक आत्मनिर्भर महिला अपने बच्चों को बेहतर संस्कार और बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकती है, उसमें बहुत सी योग्यताएं आपको देखने को मिलेंगी।

शिक्षा और आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भर बनने का सबसे मजबूत आधार है शिक्षा। शिक्षा महिलाओं को सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। आज कई महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, पुलिस अधिकारी, वैज्ञानिक और उद्यमी बनकर समाज में बदलाव ला रही हैं। ये सब शिक्षा की ताकत है। आर्थिक स्वतंत्रता का महत्व। जब महिला आर्थिक रूप से मजबूत होती है तो वह अपने आप जीवन के फैसले अधिक आत्मविश्वास से ले पाती है। आर्थिक स्वतंत्रता महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा का एहसास कराती है। आज गाँवों में भी महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से छोटे व्यवसाय शुरू कर रही हैं और अपना जीवन यापन कर रही हैं। कोई सिलाई कर रही हैं, कोई डेयरी चला रही हैं, तो कई हस्तशिल्प का काम कर रही हैं। ये छोटे छोटे प्रयास ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं की भूमिका देखी जाए तो ग्रामीण महिलाएं खेती, पशुपालन और घर की जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे तरीके से संभालती हैं। लेकिन कई बार उनमें काम को उचित पहचान नहीं मिलती, उनके काम को उचित प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। यदि उन्हें सही प्रशिक्षण और अवसर मिले तो ये गांव और देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बना सकती है। आत्मनिर्भर महिला और परिवार। कुछ लोग सोचते हैं कि आत्मनिर्भर महिला परिवार से दूर हो जाती है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है, बिल्कुल विपरीत है। एक आत्मनिर्भर महिला परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। वह अपने बच्चों को आत्मविश्वास और मेहनत का महत्व सिखाती है। महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की रास्ते में कई चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ता है, जिसे वह डटकर सामना करती है और आगे बढ़ती जाती है। जैसे कि महिलाओं के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। कई बार समाज की पुरानी सोच, भेदभाव और अवसरों की कमी उनके रास्ते में बाधा बनती है। कुछ महिलाओं को परिवार का सहयोग नहीं मिलता है, लेकिन धीरे धीरे समाज की सोच बदल रही है और वह आगे बढ़ रहा है। महिलाओं को शिक्षा के साथ साथ आत्मनिर्भर बनने के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है। तकनीक और नई संभावनाएं। आज इंटरनेट और डिजिटल तकनीक ने महिलाओं के लिए नए अवसर पैदा किए हैं। महिलाएं घर बैठे ऑनलाइन काम कर सकती हैं, अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं और नई चीजें सीख सकती हैं। महिलाएं घर बैठे ऑनलाइन नए कौशल विकसित करती हैं, नई नई चीजें सीखती हैं। डिजिटल शिक्षा महिलाओं को आगे बढ़ने में बहुत मदद कर रहा है। आत्मविश्वास एक सबसे बड़ी ताकत है महिलाओं की। आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे जरूरी है आत्मविश्वास। यदि महिला खुद पर विश्वास रखे तो वह हर कठिनाई को पार कर सकती है। समाज को भी महिलाओं का मनोबल बढ़ाना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहन करना चाहिए और उनके प्रति जो अपनी सोच है, रूढ़िवादी सोच है, उसको बदलना चाहिए। पुरुषों और परिवार की क्या भूमिका रहती है इस दौरान, आइए जानते हैं। महिलाओं की सफलता में परिवार और पुरुषों का सहयोग भी बहुत जरूरी है। यदि परिवार महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर दे रहे हैं तो वे समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। महिलाओं को जरूरी है कि प्रेरणा देना और किस तरह की प्रेरणाएं उन्हें देनी चाहिए, उसके कुछ उदाहरण हैं। आज महिलाओं को जरूरी है कि प्रेरणा देना और किस तरह की प्रेरणाएं उन्हें देनी चाहिए, उसके कुछ उदाहरण हैं। आज भारत की कई महिलाएं विश्व स्तर पर देश का नाम रोशन कर रही हैं। उन्होंने ये साबित किया है कि मेहनत, शिक्षा और आत्मविश्वास से हर सपना पूरा किया जा सकता है। सभी महिलाओं को शिक्षित होना बहुत जरूरी है ताकि वे आत्मनिर्भर बने, देश में बदलाव ला सकें और अपने परिवार और अपने बच्चों का सही संस्कार और शिक्षा प्रदान कर सकें। धन्यवाद।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो DS के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।

का परिचय कि हम महिला हेल्पलाइन कहाँ ले सकते हैं। तो देखो, महिला हेल्पलाइन एक आपातकालीन सेवा है जो महिलाओं को तुरंत सहायता प्रदान करती है। यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहती है और संकट की स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाती है। हेल्पलाइन नंबर का महत्व, महिला हेल्पलाइन नंबर 181 महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता केंद्र है। यानी अगर महिलाएं कोई संकट में फंस जाती है तो इमरजेंसी नंबर 181 पर तुरंत कॉल करके अपनी सहायता प्राप्त कर सकती है। इसके माध्यम से महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है, पुलिस सहायता प्राप्त कर सकती है, कानूनी सलाह ले सकती है और आपातकालीन मदद प्राप्त कर सकती है। महिलाएं सहायता केंद्रों की भूमिका, कि महिला जो सहायता केंद्रों को कॉल करती है इस पे क्या भूमिका है। तो महिला सहायता केंद्र महिलाओं के सुरक्षित स्थान होते हैं जहाँ उन्होंने अस्थायी आश्रय प्रदान किया जाता है, यानी थोड़ी देर रुकने का स्थान है वहाँ। चिकित्सा सहायता, अगर महिलाएं परेशान हो तो उसे प्राथमिक उपचार भी कर दिया जाता है। कानूनी सहायता दी जाती है महिलाओं को, मानसिक परामर्श दिया जाता है आदि सुविधाएं महिलाओं को अपनी, जब ये हेल्पलाइन नंबर पर फोन करेगी तो ये सारी सुविधाएं महिलाओं को प्राप्त। किन परिस्थितियों में मदद

के शिकार हो रही है। आए दिन जो केस बढ़ रहे हैं कि घरेलू हिंसा से उत्पीड़न महिलाएं जो आत्महत्याएं कर रही हैं, तो उससे पहले वो ये कदम उठा सकती है कि आपातकालीन पे फोन करके अपनी स्थिति को बता दे। तो घरेलू हिंसा के शिकार वाली यौन उत्पीड़न वाली महिलाएं दहेज संबंधी अत्याचार जो उनके परिवार में किए जा रहे हैं उनके साथ साइबर अपराध है और पारिवारिक विवाद हो जाते हैं, तो इन परिस्थितियों में महिलाएं तुरंत 1811 पे अपने हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके सुरक्षा प्राप्त कर सकती है और परामर्श ले सकती है। सहायता लेने के लिए झिझक क्यों नहीं होनी चाहिए? हमें जब हमें गवर्नमेंट अपनी सुरक्षा के लिए अपने कानून और अधिकार

सरकार दे रही है, तो हमें सहायता लेने के लिए बिल्कुल झिझकना नहीं चाहिए। इसके लिए हमें कई महिलाएं क्या होती है, सामाजिक डर और बदनामी की वजह से वो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल नहीं करती है और वो उसका शिकार होती रहती है उत्पीड़न का। लेकिन यह समझना जरूरी है कि चुप रहना समस्या का कोई समाधान नहीं होता है। हमें कानूनी सुरक्षा जरूर लेनी चाहिए। महिला सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं। हेल्पलाइन और सहायता केंद्र इन कानूनों को लागू करने में मदद करते हैं। समाज में हमारी जिम्मेदारी है, समाज को महिलाओं का समर्थन करना चाहिए। जो हमारे सामाजिक है वो महिलाओं का शोषण नहीं करे वरना, बल्कि उनका समर्थन करे, उन्हें सुरक्षित वातावरण देना चाहिए। महिलाओं को दोष देने के बजाय उन्हें सहायता देनी चाहिए। जागरूकता का महत्व, महिलाओं को जागरूक होना क्यों जरूरी है? यदि महिलाओं को हेल्पलाइन और सहायता केंद्रों की जानकारी होगी तो वे कठिन से कठिन परिस्थितियों से सामना करेगी और तुरंत उसकी समस्याओं का समाधान करेगी। इससे हमें प्रेरणादायी संदेश मिलता है कि हर महिला को ये समझना चाहिए कि सहायता लेना कमजोरी नहीं बल्कि साहस है। हम ये नहीं कि अगर किसी से सहायता ले रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर से मांग रहे हैं या किसी से सहायता मांग रहे हैं, तो ये हमारी कमजोरी नहीं बल्कि साहस है। सुरक्षा और सम्मान ही उसका अधिकार है। महिलाओं के खुद की आत्म सुरक्षा और सम्मान ही उसका अधिकार है। निष्कर्ष, महिला हेल्पलाइन और सहायता केंद्र महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन सेवाओं को उपयोग करके महिला अपने जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक बना सकती है। तो आइए हम सब मिलकर महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता को मजबूत करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।

की दुनिया चल रही है डिजिटल, इसमें महिलाओं की सुरक्षा किस प्रकार है, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया ने दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है। लोग घर बैठे दुनिया भर से जुड़ सकते हैं, लेकिन जहां सुविधा होती है वहां खतरे भी होते हैं। महिलाओं और युवतियों को सोशल मीडिया पर कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो पहले हम सोशल मीडिया के फायदे देखेंगे कि सोशल मीडिया से महिलाओं को क्या क्या फायदे हैं। तो देखिए, सोशल मीडिया से महिलाओं को शिक्षा प्राप्त कर सकती है, अपने व्यवसाय को बढ़ा सकती है, अपनी प्रतिभा को निखार सकती है, नई जानकारियां हासिल कर सकती है, लेकिन सुरक्षित उपयोग करना इनका बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया के बढ़ते अपराध, जैसे जैसे इंटरनेट की दुनिया बढ़ती हुई जा रही है, उसी के साथ आपराधिक मामले भी बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे देखो क्या क्या अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आज कई अपराधी इंटरनेट का गलत उपयोग कर रहे हैं, विशेष रूप से महिलाओं को निशाना बना के महिलाओं को टॉर्चर करके किया जा रहा है, जैसे उनके फर्जी अकाउंट बनाना, अश्लील फोटो खींच के उनके संदेश भेजना, फोटो एडिट करके वायरल करना, ऑनलाइन ब्लैकमेल करना, मानसिक उत्पीड़न करना, ऐसी घटनाएं अब दिनों दिन ज्यादा से ज्यादा सामने आ रही है। तो इसके लिए देखो महिलाओं को क्या करना चाहिए, महिलाओं को क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले अपनी व्यक्तिगत जानकारी सीमित रखे, किसी अनजान व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत जानकारी नहीं दे। हर जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करना सुरक्षित नहीं होता, विशेष रूप से महिलाओं के लिए अपनी व्यक्तिगत जानकारी सोशल मीडिया पर साझा नहीं करें। लोकेशन शेयर करने से बचे, अगर कई अनजान व्यक्ति आपसे कोई लोकेशन पूछे तो उसके लोकेशन शेयर नहीं करें। अपनी वर्तमान लोकेशन सार्वजनिक करना जोखिम बढ़ा सकता है, तो जहां आप अपनी वर्तमान की लोकेशन सामने वाला फोन करके भी पूछता है, तो अपनी वर्तमान जहां आप खड़े हुए बैठ जहां पे आप जॉब कर रहे हो तो वहां की लोकेशन नहीं बताना है। दो स्तरीय सुरक्षा का उपयोग करें, देखो कैसे, मोबाइल और सोशल मीडिया अकाउंट में अतिरिक्त सुरक्षा रखना जरूरी है। मजबूत डिजिटल व्यवहार अपनाएं, ऑनलाइन बातचीत में सावधानी और संयम रखना। कई बार हम चैट के माध्यम से ऑनलाइन बातचीत करते रहते हैं, तो अगर हम कर भी रहे तो अपने निजी से करें, कई बार अनजान से भी कर रहे हैं तो सावधानी और संयम पूर्वक बात करें। बच्चों और किशोरियों की सुरक्षा, इस डिजिटल युग में सबसे विशेष रूप से बच्चों और किशोरियों की सुरक्षा बहुत जरूरी हो गई है। आए दिन इन्हीं के मामले सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। आज हम कम उम्र के बच्चों भी सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। माता पिता बच्चों को ऑनलाइन गतिविधियों पर ध्यान देना और उन्हें सुरक्षित इंटरनेट उपयोग की जानकारी देनी चाहिए। माता पिता ये नहीं कि बच्चों को अपना मोबाइल दे दिया और छोड़ दिया, नहीं, उनकी ऑनलाइन गतिविधियां वो क्या कर रहे हैं उन सब पर अपने माता पिता की निगरानी होना बहुत ही जरूरी है। नहीं, इन्हीं के अगर निगरानी नहीं होने के कारण ही आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। यदि आप अपराध हो जाए तो क्या, माना कि अगर आपसे कोई अपराध हो गया तो क्या करें। यदि कोई महिला ऑनलाइन उत्पीड़न का शिकार हो जाती है तो उसे सबूत सुरक्षित रखने चाहिए। सबसे पहला आता प्रूफ, तो वो उसके जितने भी सबूत है, उसने ऑनलाइन चैट की है या किसी से बात की है, तो अपने सबूत को सुरक्षित रखे। साइबर हेल्पलाइन से संपर्क करना चाहिए और पुलिस या साइबर सेल में शिकायत करनी चाहिए और समय पर कार्रवाई बहुत ही जरूरी है।

अपराध रोकने के लिए कानूनी व्यवस्था मौजूद है। जो साइबर क्राइम है इनको रोकने के लिए हमारे भारत में कानून बनाए गए हैं, तो वो कानूनी व्यवस्था मौजूद है। ऑनलाइन कोई धमकी दे रहा है आपको, ब्लैकमेल कर रहा है, फर्जीवाड़ा कर रहा है, कई झूठे फ्रॉड कॉल आ जाते हैं आपसे, आपकी आईडी नंबर पूछ लेते हैं, अकाउंट नंबर लेके, तो उसको रोकने के लिए कई कानून बनाए गए हैं। आपकी फोटो का कोई गलत उपयोग कर रहा है, असली फोटो वायरल कर रहे हैं, तो ऐसे के लिए हमारे भारत सरकार द्वारा कई कानून बनाए गए, तो महिलाओं को उन कानून का लाभ उठाना चाहिए और उन पे शिकायत दर्ज करनी चाहिए। समाज की जिम्मेदारी, अब हमारे देखो महिलाओं की सुरक्षा के लिए समाज की भी बहुत अहम भूमिका होती है। जो समाज ही ये निर्णय ले ले कि नहीं हमें हमारी महिलाओं को सुरक्षित रखना है, तो देखो हमें ऐसा वातावरण बनाना होगा जहाँ महिलाएं बिना डरे सोशल मीडिया का उपयोग कर सके। आजकल की महिलाएं सोशल मीडिया का उपयोग तो कर रही हैं, लेकिन कई ऐसी है जो डर डर के कदम रखती है, डर डर के सोशल मीडिया का उपयोग करती है, कहीं हमारी फोटो वायरल नहीं हो जाए, कहीं हमारे ये नहीं हो जाए। तो ऐसा हमारा समाज ऐसा होना चाहिए भयमुक्त, जो काम करे महिलाएं बिल्कुल बिना डर के। ऑनलाइन अभद्रता, कई लोग ऐसे हैं जो महिलाओं से, अगर ऑनलाइन महिला कुछ कर रही है तो उससे अभद्रता से बात करेंगे तो गलत व्यवहार से पेश आएंगे, तो उसके विरोध में समाज को आवाज उठानी चाहिए। समाज की ये जिम्मेदारी बनती है कि कोई ऑनलाइन अभद्रता कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, तो उसके विरोध में समाज को आवाज उठानी है। डिजिटल शिक्षा का महत्व, महिलाओं को आज के समय में डिजिटल शिक्षा उतनी जरूरी है जितनी सामान्य शिक्षा। आज के इस भौतिक युग में डिजिटल की दुनिया हो गई है, तो इसमें डिजिटल शिक्षा भी इतनी जरूरी है जितनी हमारी सामान्य शिक्षा जरूरी है। यदि लोग तकनीकी के सुरक्षित उपयोग सीखेंगे तो साइबर अपराध कम हो सकते हैं। साइबर अपराध कब बढ़ रहे हैं? क्योंकि लोग बाग तकनीकी उपयोग कम जानते हैं, तो साइबर क्राइम ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जब ऑनलाइन में तकनीकी से अपनको सुरक्षित रखना सीखेंगे तो साइबर अपराधी कम होंगे। प्रेरणादायी संदेश, महिलाएं समाज की शक्ति है, बिना महिलाओं के समाज अधूरा है, महिलाओं को ही समाज की शक्ति माना है, तो उन्हें डिजिटल दुनिया में भी सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए। डरने की नहीं बल्कि जागरूक और मजबूत बनने की जरूरत है। धन्यवाद, नमस्कार।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: डीएस साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानव शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।
3: दोस्तों वक्त हो चुका है 2:00। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहे तराने। थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम भूली विसरी यादें 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डी एस।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डी एस 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: चले चले चले बाजो आ जाओ बाजो।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS 89.

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानव शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, DS के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। DS साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

हो चुका है, 3 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर रहे 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपके रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली विसरी यादें, अब थोड़ी देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।

दोस्तों वक्त हो चुका है 3:20 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस। आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक।

0: कोरोना स्थिति की धरकर
1: यार आप बहुत ही ध्यान से गाने को सुन रहे थे, तो मैंने सोचा कि यार ध्यान से मैं अगर दो लाइन पेश कर दूं तो वो भी आप सुनेंगे। तो हाँ सुनो, ध्यान से पेश करता हूँ आपके खिदमत में, अलविदा। अलविदा कह ही देते जाते वक्त, अलविदा कह ही देते जाते वक्त, कब तक एतबार करते रहे हम। और नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा, मत मनाओ गम भैया, बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज का शो यही तक था और वापस से कल मिलूंगा सेम टाइम सेम जगह, कहाँ, रेडियो डीएस 89.6 पे।
0: गंगापुर स्थिति की धरकर रेडियो डीएस।

बीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ। सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।

दोस्तों वक्त हो चुका है 4:08 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का वैम की रेडियो। दोस्त अफरजे फला दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का, और अब आप मेरे साथ सुन रहे हो राजस्थानी गाने 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमारे पास आई है सवाई माधेपुर से। सवाई माधेपुर से हमें कॉल किया है मोनिका मीणा जी ने। सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।
0: रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम।

0: हेलो
1: सर नमस्ते।
0: नमस्ते पलक जी, चौधरी आज कर रहा हूँ।
1: हाँ जी सर, नाम क्या है वो सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: नाम तो चौधरी है, गाना बढ़िया लाए। थैंक
1: यू, वेलकम।
0: आज तो फर्स्ट में आ जाए

0: आदरणीय दीदी सादर नमस्कार।
1: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: जी मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा श्री मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं?
1: सर मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हो?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। और ये मेरा चस्का लग गया है, दीवानगी हो गई, लत लग गई है रेडियो डीएस सुनने का।
1: ओके सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे आज रेडियो डीएस से?
0: बिन सजनी के ये जीवन अच्छा नहीं लगता, ये गाना सुनना चाहता हूँ रेडियो डीएस पर।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, क्या है आपका?
1: मोनिका,
0: कहाँ से बात कर रहे हैं मोनिका जी?
1: रेलवे कॉलोनी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: ओ लाला रे, ओ लाला रे, टार्जन फिल्म का।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं।

0: मेरे पास रहने दे।
1: ओके सर।
2: आपका
1: फरमाना चाहोगे सर?
0: हाँ जी, रेडियो।
1: हाँ जी, क्या है आपका?
3: मोनिका
0: नाम, बाबू खान है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: हाँ जी, तुझे जो कहना है कहने दे, तेरा दिल मेरे पास रहने दे।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुना?
2: तेरा दिल मेरे पास, तेरा दिल मेरे पास।
0: सुना चाहोगी?
1: दो लफ्जों में लिख दी मैंने अपनी प्रेम कहानी।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, पढ़िएगा।

0: हेलो,
1: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
0: गुड इवनिंग सर, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम है ये सलवानी मैम।
0: कहाँ से बात कर रहे?
1: जूलियट गंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: आज गाना सुनना चाहते हैं हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात का नंबर होते हैं।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा।

0: ओके मैम, थैंक्स मैम.
1: यू वेलकम सर. हेलो हेलो.
2: हाँ जी नमस्कार
1: सर. नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
2: साबिर बोल रहा हूँ, दशहरा मैदान से.
1: हाँ जी, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: है उठेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे.
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना.

0: नाम बताइए आपका।
1: अमित सैनी।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हो? गंगा प्रसिद्धि।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: जीऊंगा कैसे।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी सर, नाम क्या है आपका?
1: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ मैं, जिला विदिशा नगर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: फिल्म का नाम है संग्राम।
0: हाँ जी,
1: गाने को बोल हूँ बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद आप।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: कोमल।
1: कहाँ से बात करो? कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: बन जाएगा दीवाना रखी।
1: ओके, मैं सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करें।

वक्त हो चुका है 5:08 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: वंदना।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: दिल लगाना बना था।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर ये गाना

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: किरण वर्मा, गंगापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: जन्म जन्म जो साथ।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। परेगा

0: कपूर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: जाओ चाहे दिल्ली बम्बई आगरा, नहीं मिलेगा ऐसा घाघरा।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेगी।

0: रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
1: सर्दियों में बाजरे की खिचड़ी मुझे इतनी पसंद है और खास तौर पे राबड़ी भी। मैं हूँ आरजे खुशी। सर्दियों में बाजरे की रोटी, बाजरे की खिचड़ी इतनी अमेजिंग लगती है, और अगर छत पे बैठे हो, वरांडे में बैठे हो, हल्की हल्की धूप आ रही हो और कुछ बढ़िया सा खाना हो तो मजे आ जाते हैं। आपको बताना चाहूंगी कि इस सीजन में यानी कि विंटर्स में यानी कि सर्दियों में अगर आप आंवले का अचार खाते हैं ना तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे पता है कि आपको आंवला बहुत पसंद है, और ये आंवला केवल टेस्ट के लिए नहीं, आपकी हेल्थ के लिए भी ओवरऑल बहुत अच्छा है। इससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, यानी कि आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते, और जो भी बीमारियां इस सीजन में आएंगी ना उनको आप इजीली फाइट कर पाएंगे, यानी कि इजीली उनके खिलाफ आपका शरीर खड़ा हो पाएगा। अब मिलेंगे कल इसी पते पर इसी समय। मैं हूँ आरजे खुशी,
2: गंगापुर सिटी की धरती।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो आपको बहुत कुछ सिखाता है। जो उसमें लिखा है उससे तो हम सीख ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रिया श्री कृष्ण ने दी है वो भी बड़ी सीख सिखाती है जीवन की। मैं हूँ आरजे खुशी। जैसे कि जब तक अर्जुन ने खुद को समर्पित नहीं कर दिया ना श्री कृष्ण के सामने, तब तक श्री कृष्ण ने अर्जुन को डांटा नहीं, यानी कि अपना हक नहीं जमाया। और हम क्या करते हैं, जहां देखा जिस पे देखा चिल्लाना शुरू कर दिया। वहां से हमें ये सीख मिलती है कि जब तक आपकी कोई बराबर का ना हो या जब तक आपसे कोई सुनना ना चाहता हो चीजें, तब तक हमें जबरदस्ती अपनी बात नहीं बोलनी चाहिए। सोच कर देखिएगा। लौट कर आती हूँ थोड़ी देर में। मैं हूँ आरजे खुशी।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: पानी हमारे लिए बेहद जरूरी है और सर्दियों में हम सबसे ज्यादा जो चीज भूलते हैं ना वो है पानी पीना। मैं हूँ आरजे खुशी और अगर आप जानना चाहते हैं ना कि आपके शरीर को कितने पानी की जरूरत है तो आज मैं आपको बताऊंगी। देखिए हर 20 किलो पे 1 लीटर पानी हमको पीना चाहिए, यानी कि मान लीजिए कि अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपको दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर आपने इतना करना शुरू कर दिया ना तो आप देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य एकदम से बेहतर हो रहा है। लौट कर आती हूँ थोड़ी देर में, सुनते रहिए, मैं हूँ आरजे खुशी।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: कहते हैं जैसी हमारी संगत वैसी ही हमारे जीवन की रंगत। मैं हूँ आरजे खुशी और थोड़ा सा अगर हम ध्यान देने लगे ना कि हमारे आसपास क्या बात हो रही है, क्या इस बात में मेरा यहाँ पे होना जरूरी है, क्या मेरा इस बात में कुछ भी बोलना जरूरी है, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। और अगर आप चाहते ना कि आपकी जिंदगी में हमेशा सकारात्मकता बनी रहे तो आप फालतू की बातें करने से थोड़ा सा बचने की कोशिश करें। एक हफ्ते में भी अगर आपने ऐसा कुछ प्रैक्टिस किया ना तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो चुका है। कोशिश करके देखिए, मैंने अपने जीवन में अपना कर देखा और बड़े बदलाव देखे हैं। कल मिलूंगी आपसे, मैं हूँ आरजे खुशी
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: किसी की धड़कन। रेडियो डीएस, रेडियो डीएस।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतर
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतर रेडियो डीएस
2: पसंद मचना चाहिए गाना
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी की धड़कन
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी की धरती
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: नए दिन में आपका स्वागत है। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होती है जो आपको किसी शॉप पे नहीं मिल सकती, जैसे कि एक्सरसाइज करना, सुबह शाम घूमना, व्रत रखना, सबके साथ हंसी मजाक करना, फैमिली के साथ वक्त बिताना, पूरी नींद लेना, खुश रहना और कुछ मामलों में चुप रहना, लोगों की हेल्प करना, एक अच्छे दोस्त का साथ होना और आखिर में हम 89.6 डीएसएफएम भी आपके लिए दवाई है। मैं तनिषा आपके साथ 89.6 डीएसएफएम पे
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। हमारे देश में बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, उनमें से एक है पत्थर चट्टा की जादुई पत्तियां, जो आपको यूरिन इन्फेक्शन में राहत देगी, ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रखेगी, हड्डियां मजबूत बनाने में मदद करेगी। इसका पौधा आप अपने घर पे भी लगा सकते हैं। यहीं पे और हेल्थ टिप के साथ मैं मिलूंगी आपसे 89.6 डीएसएफएम पे। मैं तनीषा।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: हाँ जी खबर पक्को है वो दुर्गा आज रात अपने यार के साथ मेले में जाने वाली है
1: आज की रात उस लौंडे की आखिरी रात होगी राणा से दुश्मनी लेने का मतलब है ये बंदूक और उसका सर

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।